کا محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
4: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
7: बंद करो ना ढक्कन.
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैज कैश है ना.
11: This program is brought to you by
4: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
12: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
8: And Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
13: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
16: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
17: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
18: ہماری ذمہ داری ہے.
17: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: لائک اس آن facebook.com/FM247365. FM247365. FM.

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सुबह के वक्त अपना मूड अच्छा रखें, अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से, और नमाज पढ़ें. आई होप कि आपने नमाज पढ़ी होगी. कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ जब भी पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें. अपने शो का आगाज हम करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर बहा दिए जाएंगे और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी, हर जान को मालूम हो जाएगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा. ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया. सिर्फ अगर आप इस आयत पे गौर करें कि जो रब है इतना करम वाला रब है, तो उसके बारे में हमें किसी किस्म का धोखा नहीं होना चाहिए. वो आपको देख रहा है, आपके हर काम को, आपके अमाल को, और उससे हमेशा अच्छी और खैर की उम्मीद रखनी चाहिए. और हम अपने शो का आगाज करते हैं इस ट्रैक के साथ, आइए सुनते हैं.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खास वहाँ HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहाँ खास वहाँ HBL.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: Sweep Be Clean. Kare tezi se sak daag aur jaraseem ka khatma. Aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हमारे पास आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज, और ये मैसेज है एचपीएल की जानिब से। और अब आप खोलें अपना एचपीएल फ्रीडम अकाउंट और हासिल करें मुफ्त आईबीएफटी, मुफ्त चेकबुक और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत। अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है, अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी एचपीएल ब्रांच। और अब नया एचपीएल मोबाइल ऐप के साथ बैंकिंग का नया अंदाज एक्सपीरियंस करें। एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। तो ये मैसेज था एचपीएल की जानिब से। और अब मैं बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर सुकून चाहिए या जुनून चाहिए। और एक टाइम होता है आपकी लाइफ के अंदर कि आपको सिर्फ बहुत एक्साइटमेंट और आपको बस चीजें बहुत फास्ट अभी अभी सब कुछ मिल जाए। और एक टाइम होता है कि जब कहते हैं ना यार बस बहुत बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा जो है ना वो सुकून होना चाहिए, राइट? और तो इसलिए अब आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आना शुरू हो चुके हैं। आबिद अमीर साहब का, इकबाल हुसैन एंड रहीम बलोच, मोहम्मद सलीम, याह हमीद, तो सबके मैसेजेस आना शुरू हो गए। आप लोग भी मुझे मैसेज करें और बताएं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सुकून या जुनून। क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए एक एज होती है जब व्हेन यू आर वेरी एम्बिशियस, यू नीड लॉट ऑफ पैशन टू यू नो, एंड यू नीड लॉट ऑफ मोटिवेशन कि आप काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और आगे से आगे जाएं। इतना आगे लोग निकलना चाहते हैं कि मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं कि नहीं नहीं हमने यहां हमारा फ्यूचर ही नहीं, हम वहां जाएं। और उनके अंदर बड़ी उनके अंदर बड़ी मोटिवेशन आग होती है कि वी हैव टू डू दिस इन लाइफ, टू डू दैट इन लाइफ। और उनके आगे बढ़ने से फिर पूरी फैमिली भी आगे बढ़ती है। और कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं नहीं यार आई एम हैप्पी विद दिस वेरी नाइस स्मॉल जॉब दैट दे हैव, मैं अपनी यही जॉब है जो भी मेरी उसी में खुश हूं और मुझे नहीं करना बिजनेस, मैं सुकून हूं, सेट है। सो देयर यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। और आप कौन सी स्टेज पे हैं बहुत डिपेंड करता है कि आपको उस स्टेज पे अपनी लाइफ में क्या चीज चाहिए। कराची वालों को तो सुकून ही चाहिए होगा क्योंकि कराची में वैसे ही इतनी एक्साइटमेंट है। कराची वालों कितने बोरिंग बना दो मेरी लाइफ को, बोरिंग इतनी टेंशन हम नहीं उठा सकते, इतनी एक्साइटमेंट जो रहती है, खासतौर पर अगर आप रोड पे हैं, एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है। तो खैर आप लोग अपनी बातें हमें बताएं, ये तो हमारी बात है, हमें मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे। एक और तरीका भी है जहां पे अक्सर बुरहानुद्दीन साहब हमें मैसेज करते हैं, हकीम शकीम साहब पता नहीं कहां चले गए, कहां गायब हैं। तो हमें आप मैसेज करें आरजे समीहा की अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। ये तरीका जो है ये सेलफोन यूजर्स के लिए है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। ऑलराइट, एंड लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका

0: एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: And
3: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
4: HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: पाकिस्तान हमसे है हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान
6: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: समझे आप ना, कुछ तीन बार मौत देखे
2: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 fm247365।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
9: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
7: बंद करो ना ढक्कन.
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
4: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
11: This program is brought to you by
4: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
12: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
13: FM247365.
14: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: FM 100 Traffic Update.
16: Assalamu alaikum, Pakistan. FM 100 par traffic update ke saath main hoon Farooq Azhar. Shehar Karachi ki sadkon aur shaharahon par traffic ki is waqt surat-e-haal kuch is tarah hai. FM 100 ko milne wali tala ke mutabik is waqt wo tamam traffic jo aa raha hai is waqt Kamran Chaurangi se जोहर मोड़ की जाने उसके दरमियानी रास्ते पर तामीरी काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है. इसके साथ साथ चारा फैसल से वो ट्रैफिक जो मरीज सिटी से इस वक्त बलोच कॉलोनी ब्रिज की जानी आ रहा है, दरमियानी रास्ते पर ऑफिस टाइमिंग की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है. कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वो ट्रैफिक जो इस वक्त सिंगर चौरंगी से जा रहा है ब्रूक्स चौरंगी की जानी, उस पर भी ट्रैफिक का इस पर दबाव बढ़ गया है. लिहाजा वो तमाम लोग ٹرین راستوں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
17: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

0: 30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries,
2: and
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and
5: sweep be clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf,
2: and
6: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल

भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन सुकून वो है जो थकन उतार देता है। जुनून में इंसान दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में खुद से पीछे रह जाता है। मुझे वो सुकून चाहिए जिसमें रात की नींद भी पूरी हो और दिल में किसी के लिए नफरत ना हो। पैसा, नाम, शोहरत सब आते जाते रहते हैं, सुकून एक बार गया तो वापस नहीं आता। वैसे भी सुकून वाले लोग ही असल में जिंदगी जीते हैं। ये सुकून वो सुकून है कि हाथ पे हाथ धरे सुकून से बैठना, या मुराद इंसान के अंदर का सुकून है। और वाकई में बहुत पैसे वाले लोगों के घर में मैंने सुकून नहीं देखा। वो अपनी दिल की बेचैनी को मिटाने के लिए पार्टियां कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ, लेकिन सुकून नहीं मिलता। और सुकून कभी भी आपको सूद में नहीं मिलेगा। जहां जहां सूद शामिल होता है आपकी जिंदगी से सुकून कम हो जाता है। ऐसे कोशिश कीजिए, अब जैसे लोग गाड़ियां सूद पे ले लेते हैं या घर सूद पे ले लेते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने भी लगाई हुई है, अगर कहीं पे 1% भी इंटरेस्ट है तो भूल जाइए सुकून। उनके सूद अल्लाह से जंग है। और लोग कहते हैं यार हमें अपना घर चाहिए। भाई सूद पे आपने अपना क्या घर बनाना है, कब्र ऐसा लग ठिकाना है? अगर आपको बगैर सूद के घर मिल सकता है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, तेशावा शावा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन अगर आपको सूद पे घर बनाना है तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि आपकी उम्र गुजर जाएगी, वो सूद अदा नहीं हो पाएगा। ये काम, ये खेल बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों के वालों के हैं। अक्सर तो खुद बैंक के इतने ज्यादा शेयर्स ओन करते हैं, इनको पसंद, उनको गेम आता है सूद से सूद बढ़ाना, पैसे से पैसा कमाना। ये आम लोग जब इस चक्कर में फंसते हैं तो इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो जहां जहां सूद का जिक्र भी है, शायबा तक है, वहां से दूर रहिए। भले वो कोई सिस्टम आपसे सूद ले रहा है या कोई इंसान आपसे सूद ले रहा है, सूद जो है वो अल्लाह से जाएंगे। और आप ट्राई करके देख लें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देख लें, ले लें पैसा सूद पे, और फिर आपको पता चल जाएगा कि सुकून आपको सुना होगा फिर आपने उसका नाम। ऑलराइट, वक्त हुआ कि मैं आप लोगों से लूं इजाजत। आवेद नवीन साहब के बड़े सारे मैसेजेस थे, वो बिरयानी वाला मैसेज मैं पढ़ लूं, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो बड़ी बात है। बिरयानी की बिरयानी मुझे भूख लग रही है वैसे इस वक्त। हाँ, तो आवेद नवीन कह रहे हैं, अगर ये सवाल हम किसी बॉस से करें तो उसे तो सुकून के नाम से नफरत होगी, क्योंकि उन्हें तो जुनूनी वर्कर चाहिए, बस काम करते जाए, और बीमार होना, परेशान होना, घर में किसी वजह से छुट्टी करनी पड़े, और ना हमारे लिए ट्रैफिक जाम हो, वाह भी वाह, पर हमें तो खाना देखते ही जुनून आता है। हाँ, तो बस हम तो खाने में कहते हैं ना, चाय मिल जाए, खाना बिरयानी मिल जाए, मस्त है लाइफ, उसके आगे कुछ नहीं है, और बस ये हमारी जिंदगी है। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। मनाजिर महमूद मनाजिर के भी मैसेज आया। ओ, नजीर खोसो साहब भी कुछ कह रहे थे टॉपिक के ऊपर। नजीर खोसो साहब क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जिंदगी में सिर्फ भागना भी ठीक नहीं है, सिर्फ बह जाना भी ठीक नहीं है। जुनून होता है तो बंदा कुछ कर गुजरता है, कोई ख्वाब पूरा करता है, लेकिन हर वक्त अगर भागते रहो तो दिल थक जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। अगर सुकून हो तो नींद अच्छी आती है, दिल हल्का रहता है। अगर सिर्फ सुकून ही हो तो बंदा सुस्त पड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे ख्याल में जुनून काम के लिए चाहिए और सुकून रिश्तों और दिल के लिए चाहिए। दिन में जुनून से मेहनत करो और शाम को सुकून से घर वालों के साथ बैठो, तो बस यही है। मुझे दोनों चाहिए, दोनों जुनून ख्वाबों के लिए और थोड़ा सुकून सांस लेने के लिए। बिल्कुल सही है, मगर कराची वाले उल्टा कर रहे हैं। दिन में ये ऐसे सुस्त तो काहिल पड़े रहते हैं जब काम का बोलो, और रात के वक्त चाय के ढाबों में मेले लगे होते हैं। ऐसे प्लीज रात जो है अल्लाह ताला ने आराम के लिए, सुकून करने के लिए बनाई है, और दिन जो है काम करने के लिए बनाए, अक्सर लोग उल्टा कर रहे होते हैं। बातें हमारी जारी हो सारी अब नहीं रहेंगी, क्योंकि अब हमें लेनी है आपसे इजाजत। और आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक। ये ट्रैक मैं डेडिकेट कर रही हूं, क्या कहते हैं, इकबाल हुसैन साहब को। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी अल्लाह से बातें करने की। तो सुकून जो है ना, एंड में यही कहूंगी कि अल्लाह ताला के जिक्र में ही है। आइए सुनते हैं ये ट्रैक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समी और आप लोगों के बहुत ही खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मेरे पास हैं और अदनान अहमद और आबिद अमीर और मलिक मोहम्मद आदिल, शुक्रिया आपके मैसेज का। अदनान अहमद का हम रूह परवर मैसेज शामिल करेंगे। वैसे वसी साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हैं, सुन तो रहे होंगे आप, सुकून चाहिए, जुनून चाहिए, खुद भी मुझे पता है कि सुकून चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को किताबों से मोहब्बत होती है ना, उनको सुकून चाहिए होता है लाइफ में। खैर, अदनान अहमद का मैसेज हम शामिल करते हैं। मुझे जिंदगी में जुनून नहीं, सुकून चाहिए, क्योंकि जुनून थका देता है और सुकून जीने का मजा देता है। जब दिल मुतमईन हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगती है। सुकून बेहतरीन चॉइस है, जुनून के पीछे

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहाँ HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ खाब वहाँ HBL.
4: किसने कहा था पैसा

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।

Assalamualaikum, Pakistan and Assalamualaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hain aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? तो जी होंगी आपसे खूब सारी बातें शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक क्योंकि जी म्यूजिक के बगैर वो कहते हैं ना कि जी प्रोग्राम का जो वो मजा है वो थोड़ा थोड़ा अधूरा रह जाता है तो जी किसी भी चीज को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे आपसे खूब सारी बातें करेंगे चिट चैट करेंगे आपके हाल अहवाल जानेंगे सवाल पूछेंगे आपके पसंद के म्यूजिक को शामिल करेंगे तो चलें जी सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा ये होता है कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज कर लेते हैं क्योंकि वो आगाज सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं होता बल्कि होता है एक जबरदस्त से म्यूजिकल ट्रैक के साथ तो क्या कहते हैं चलो जी लेट्स बिगिन तो चलें जी करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज एक जबरदस्त से ट्रैक के साथ

0: यस एवरीबॉडी, सो हसन जहांगीर का ये आइकॉनिक ट्रैक जो कि हम सबका बड़ा ही फेवरेट है. तो मैंने कहा भाई अभी तो बस आगाज हुआ है, तो चलो जी आपकी पसंद के ट्रैक्स को भी शामिल करते हैं, आपके मूड को अच्छा करते हैं, क्योंकि मूड का अच्छा रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरा गला मुतासर हो गया है. और क्यों हो गया है ये मैं याद करना चाह रही हूं, कैसे मैंने क्या खाया था, क्या पिया था. लेकिन शुक्र है कि बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, अभी अभी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी ठीक हो जाए. तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक कप गरम गरम चाय की तलब है मुझे, जिसे मुझे जल्दी पी लेना चाहिए ताकि जो गला है वो एज सून एज पॉसिबल ठीक हो जाए. क्योंकि भाई सर्दी गर्मी खजा बहार मौसम जो भी हो, चाय एक ऐसी चीज है जो कि हम पाकिस्तानियों का जिंदगी का एक हिस्सा है. इसके बगैर जीना इज वेरी डिफिकल्ट. और आपको लग रहा होता है कि आपके हर मर्ज का इलाज है ये एक कप चाय, और एक कप चाय से आपके सारे मसले जो हैं वो खत्म हो सकते हैं. तो बिल्कुल, चाहे वो आपका गला खराब है, वो आपके सर का दर्द है, वो जो भी मसला है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि चाय आप जरूर पिए, क्योंकि चाय आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है. ऐसा मैं नहीं, ऐसा हम सब मानते हैं कि चाय हमारी सेहत के लिए जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जैसे कि अभी मैंने कहा ना सर का दर्द कम कर देगी, आपको नजला खांसी जुकाम है उसमें आपको बेहतरी लगेगी, लेकिन उसी के साथ साथ मजे की बात यह है कि अगर आपका मूड भी खराब हो ना तो वो एक कप मजे की चाय से आपका मूड भी अच्छा हो जाता है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि चाय मजे की भी हो. मैंने देखा है कि चाय बनती एक ही प्रोसेस है, यानी कि उसमें आपको पानी डालना है, पत्ती डालनी है, और पानी पत्ती शक्कर जो जिस तरह की पीते हैं, लेकिन उसी पत्ती के बावजूद भी हर कोई अच्छी चाय नहीं बना पाता. और मेरा बड़ा इख्तलाफ रहता है उन लोगों से जो चाय अच्छी नहीं बना पाते. मैं कहती हूँ यार प्लीज जरा सी कंसंट्रेशन के साथ चाय बनाओ, बिकॉज अगर चाय अच्छी ना हो ना तो ऐसा मूड खराब होता है कि वो फिर मूड ना ठीक नहीं हो पाता. तो प्लीज चाय को दिल से बनाएं, बददिली से ना बनाएं यार, मेरी रिक्वेस्ट है. ऑल राइट जी, इसी के साथ साथ प्यारी हुरिया का मैसेज आया है. कहती है, नमाज और कुरान पाक पढ़ने से आता है चेहरे पर नूर, और मेरी फातिमा आप भी तो हैं जन्नत की हूर. अरे वाह भाई वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. कहती है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान हुरिया. वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें आप, जीती रहें और हंसती मुस्कुराती रहें. बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस का. ये जो आप बनाती हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि ये आइडिया आपके पास आता कहाँ से है, मतलब कैसे आपका ये माइंड चलता है इतने सारी चीजों को बनाने में, दैट इज सो इम्प्रेसिव, थैंक यू. जरीनूर भी कहती हैं, सलाम कैसी हैं, तबीयत कैसी है. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है. आप बताएं आप कैसी हैं. तो भाई हाजिरी लगाना शुरू हो गई है हमारे लिसनर्स की, और ये भी बता रहे हैं कि जी कौन हमें कहां से सुन रहा है. अच्छा, कुछ लिसनर्स तो हमारे इतने रेगुलर लिसनर्स हैं कि हमें पता है कि वो कहां से हैं, और क्योंकि उनका और हमारा एक लंबा साथ है जो कि हम लोग 12 से 2 के दरमियान साथ गुजारते हैं. उसी के साथ साथ और भी लोग हमें जहां कहीं से भी सुन रहा है, प्लीज हमें जरूर बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं. जब तक हम भी चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानिब, बिकॉज ब्रेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो ब्रेक को शामिल करते हैं, ट्रैक के साथ आते हैं वापस, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
3: बंद करो ना ढक्कन.
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
5: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है. ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है. मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है. ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो. वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें. हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है. नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Yes, everybody. So I am back और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है क्योंकि हम आ चुके हैं वापस और भाई मैसेजेस भी हमारे पास आना जो है वो शुरू हो चुके हैं. रशीद खान हमसे जुड़ चुके हैं, जरी नूर और रीमा तो वैसे जुड़ चुकी थी और रीमा के साथ साथ उनकी बेटी हूरिया भी हमारे साथ मौजूद है एंड दैट इज सो नाइस. और उसी के साथ साथ सुनने वाले हमें कई हैं लेकिन वो हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं. तो आप भी अपनी हाजिरी लगाएं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. तो फॉलो करें इस तरीकाकार को और जल्दी से बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. और जरूर आप लोग अपने हाल अहवाल हमें बताएं. सर जरा कराची के दर्जे हरारत पर नजर डाल लेते हैं बिकॉज आज भी कराची में थोड़ी बहुत हवा चल रही थी और अभी जो लोग सफर कर रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा. लेकिन इसी के साथ साथ आज है बुध और कल से कराची के मौसम में तब्दीली की पेशेंगोई मौजूद है क्योंकि कल से जो एक सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने जा रहा है उसके जेर असर शहर कराची में जो है वो गर्मी जरा ज्यादा महसूस होगी क्योंकि थोड़ा बहुत हब्स हो जाएगा. जो ये समुद्री हवाएं चल रही हैं ये भी रुक जाएंगी जिसके जेर असर ऑब्वियसली कराची में जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी हो जाएगी. ऐसे थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज्यादा ही गर्मी की पेशेंगोई मौजूद है बस. लेकिन अभी इस वाले भी सिस्टम से कराची में कोई ऐसा बारिश की खास पेशेंगोई तो मौजूद नहीं है. लेकिन अच्छी खबर लोगों के लिए यह है कि अगस्त के पहले हफ्ते में हम लोग जो है वो एक स्ट्रांग सिस्टम को एक्सपीरियंस करने वाले हैं. तो यहां अगर मैंने कहा कि एक अदद आपको ऐसी खबर दी है जिससे आप उदास हों तो उसी के साथ साथ आपको अच्छी खबर भी दे देते हैं और वो अच्छी खबर क्या है बिल्कुल वो हम आपको जरा तफसील से बताएंगे कि मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल क्या कहती है. वैसे तो अभी अगस्त के आने में थोड़ा वक्त है और अभी तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे थोड़े उदास भी हैं कि इतनी दो महीने की छुट्टियां. वाकई में भाई एक बड़ा ग्रैंड हॉलीडे होता है क्योंकि ग्रैंड हॉलीडेज होते हैं, बल्कि नॉट हॉलीडे, दो महीने की छुट्टी. ओ माई गॉड, सो मच फन, जिसमें लोग अपनी नानी के घर रहने जा रहे होते हैं, दादी के घर रहने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिकनिकों पे जा रहे हैं और फिर जब वो वक्त आता है कि अल्लाह ये छुट्टियां अख्ताम पजीर होने जा रही हैं, वालिदैन तो एक जाने बड़े खुश होते हैं लेकिन बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि ये छुट्टियां खत्म होने वाली हैं. तो बिल्कुल आपके दुखी दिल पर भी बात होगी. और उसी के साथ साथ एक अदर ट्रैक की जाने भी चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Hormones ke bare mein confuse hain, mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan, aakhir jism ke andar kya ho raha hai, to sunna na bhulein Hormone Talks, jahan hogi sehat aur hormones balance par khulkar baat, mahireen ki raaye aur rozmarra ki aasan tips. Program mein hamare mehmaan honge Dr. M. Qamar Masood, Professor and Consultant Endocrinologist, Head Section of Endocrinology Department of Medicine, Aga Khan University and Hospital, Karachi, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. Program ka mauzu hoga, Calcium ki kami ya zyadati kin bimariyon ki nishandehi karti hai. Jumirat, 23 July, 2 baje, sirf FM 100 par. Ye program, ADCO Group aur Pakistan Endocrine Society ke taawun se pesh kiya jayega.
1: Pakistan Association of Dermatologists and ADCO Laboratories ke taawun se har jumma 12:30 se 1 malumati program jisme baat hogi skin condition ke hawale se. Pakistan ke naamwar doctors shirkat karenge, to sunna na bhule sirf FM 100 Pakistan par.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM.
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक
3: حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ

देखा चाय से जुड़े जज्बात एहसासात ही कुछ अलग लेवल के होते हैं, वो इतनी पसंद होती है लोगों को कि चार्जर का लकअप देना भी ठीक रहेगा। मोबाइल चार्ज हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन अगर चाय की चार्जिंग ना मिले ना तो लगता है कि बात अधूरी रह गई है। सो चाय इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, बिल्कुल ठीक है भाई। और जरीनून ने ये भी बता दिया कि अच्छी चाय बनाती है, बिल्कुल भाई चाय अच्छी होनी चाहिए, वरना चाय जो है ना वो आपका पूरा मूड खराब कर देती है। और ये तो मैं कह सकती हूँ कि अगर चाय अच्छी ना हो तो मूड तो खराब होता ही होता है, मुझे लगता है पूरा दिन ही खराब जाता है। सो प्लीज चाय को दिल से बनाएं ताकि आपकी चाय में भी जायका आ जाए। इसी के साथ साथ ट्रैक की जानिब चलते हैं, जिसकी रिक्वेस्ट हमसे रशीद खान ने की है, इसे शामिल करते हैं, फिर वापस आकर आपसे करते हैं मजीद गुफ्तगु। कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। बहुत सारी बातें और आपके मैसेजेस अभी हमारे पास बाकी हैं जिसे हम करेंगे शामिल, सो स्टे कनेक्टेड।

0: 6:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany. Proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

Hello and assalamu alaikum Pakistan. This is me Fatima Khan and I'm back again. Main aa chuki hoon wapas aur aap sab sun rahe hain program Lunchtime Special with me. तो जी हाँ, हमारा और आपका साथ होता है 12 से 2 के दरमियान मंडे टिल सैटरडे, और ये साथ हमारा और आपका कायम और दायम है. आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. अभी हमने आपसे पूछा था कि जी आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा है जो आजकल चल रहा है. उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल है, तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही बात हो, बल्कि लातादाद बातें होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं. और जब हम प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में दाखिल होते हैं तो ये बातें मजीद चटपटी और मजेदार हो जाती हैं, जिसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है ये हम आपको बताएंगे कुछ देर बाद. लेकिन इससे पहले प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की एक अदद रिवायत है, एक अदद ट्रैक हम अपने तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं, और वो आज हम इब्राहिम हक की आवाज आपको कर रहे हैं डेडिकेट. तो इस ट्रैक को आप लोग एंजॉय करें, फिर वापस आकर वो मजेदार चटपटी और मसालेदार बातें हम करेंगे शुरू. लेकिन उससे पहले एक ट्रैक.

ओके, अब्राउल हक की आवाज के साथ हम आ चुके हैं वापस, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको अब्राउल हक की आवाज की है डेडिकेट। अब्राउल हक की भी भाई बहुत सारे जो है ना वो जबरदस्त ट्रैक हैं, और स्पेशली नच पंजाबन जब भी मैं शामिल करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नच पंजाबन इज द वन ट्रैक जिसके जब भी आप सुने ना तो आप खुद ब खुद जो है वो मूव करने लगते हैं, क्योंकि उस ट्रैक की बात ही अलग है। जब भी आप सुने ना तो मैं कहती हूँ वो ट्रैक है फुल ऑफ एनर्जी, जिससे शादी ब्याह की तकरीबात में भी जरूर शामिल किया जा रहा होता है, और वो इतना मजा आता है सुनकर ना कि मतलब एवरी वन स्टार्ट शिवरिंग, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई जैसे जैसा भी डांस आता है वो करने लगता है, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक ट्रैक है, उसकी बीट और म्यूजिक सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। खैर जी, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल हो गए हैं तो ऑब्वियसली होगी खाने पीने पर बात जरूर, कि आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, या फिर रात में सालन रोटी थी वही आज लंच में खाने का इरादा है, या बिरयानी थोड़ी ज्यादा बना ली थी कि दोपहर में भी खा लेंगे, या फिर कुछ और आज स्पेशल बनाने का इरादा था तो आज ये बनाएं, तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। रशीद खान ने तो बताया कि भाई उनके लंच में सब्जी है। जरीनूर कहती है कि आज खाने में आलू की तहरी और शामी कबाब सैलेड चटनी के साथ। अच्छा, कल रात में आई हैड तहरी और अभी आई हैड बिरयानी। ऐसे तहरी और बिरयानी जो है वो कह सकते हैं कि थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं, नहीं रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, बिकॉज बिरयानी इज समथिंग एल्स और तहरी इज समथिंग एल्स, लेकिन ये है कि तहरी जो है ना वो खवातीन का मानना ही होता है कि जी क्विकेस्ट चीज है जो कि फौरन से बन जाती है, और खवातीन जो है वो मुतमईन हो जाती है इसे बनाने में। लेकिन तहरी भी ना हमारी एक नेशनल डिश के तौर पर इस्तेमाल बनाई जाती है, बल्कि क्योंकि तहरी जल्दी से बन जाती है, और जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आलू तो मेरे ख्याल से सबके घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ही, तो और चावल खाने का दिल चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये कि जी तहरी बना लो। लेकिन तहरी बिरयानी और टमाटर से जुड़ी हर चीज बनाने से पहले आप सबको बहुत बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि टमाटर की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। 400-450 रुपए टमाटर जो हैं वो चल रहे हैं, और इस दफा टमाटर के मिजाज जो हैं वो कमी नहीं हो रहे हैं भाई, टमाटर तो आसमान पर ही रह रहे हैं आजकल। तो ये है कि टमाटर से जुड़ी तमाम चीजें बनाने से पहले एहतियात बहुत जरूरी है, बिकॉज टमाटर बड़े महंगे हैं जी, और हर चीज में डलते हैं टमाटर। तो क्या आप भी वाकिफ हैं टमाटर की इस बढ़ती हुई कीमतों से, या अभी आपको पता चला है कि टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं? खैर, अगर अभी पता चला है तो वेरी सैड, लेकिन टमाटर महंगे हो चुके हैं। आपके लंच में क्या है हमसे जरूर शेयर करें, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, क्लियर चाहे लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। चलते हैं हम एक अदर ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी मेरे दोस्तों, तो हम आ चुके हैं वापस और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है भाई। उसी के साथ साथ आज है 22 जुलाई की, यानी कि 22nd ऑफ जुलाई है आज, और जुलाई भी गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कोई कह रहा है तेज गुजर रहा है, कोई कह रहा है आहिस्ता गुजर रहा है। अच्छा, अब ना कुछ ऐसी भी हम लोग की आदत हो गई है, बिकॉज टाइम इज एक्चुअली फ्लाइंग और वक्त बहुत ज्यादा तेज से गुजर रहा है, इसलिए अब हम इतने आदी हो गए जल्दी जल्दी सी चीजों के, यू नो, ऐसा लगता है कि ये दिन गुजर जाएगा, महीना गुजर जाएगा, और देखा जाए तो ये साल ही बड़ा तेज से गुजर रहा है। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज जरा सी तवील हो जाती है ना, तो हम लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह कब गुजरेगा ये महीना या कब गुजरेगा ये टाइम, बिकॉज वी आर नॉट हेयर फॉर वेटिंग, बिकॉज हमसे किसी भी चीज का इंतजार और बर्दाश्त खत्म हो चुका है। हम गैजेट्स के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हम इंसानों को भी बिल्कुल गैजेट समझने लगे हैं, कि अगर किसी से कोई बात कही है तो वो मिनटों में, सेकंडों में उसका जवाब दे दे, या सेकंडों में या मिनटों में उस काम को जो है वो जल्दी से कर ले। अब सब्र जो है वो खत्म होता जा रहा है हमारी जिंदगी से, और ये वाकई में एक अदद रियलिटी है। खैर जी, आज कौन से दिन मनाया जा रहे हैं? आज नेशनल मैंगो डे मनाया जा रहा है। ओके, आम के शौकीन लोगों का आज का दिन मनाया जा रहा है, नेशनली इंटरनेशनली तो नहीं, लेकिन आम जो हैं वो अब इसी महीने के मेहमान रह गए हैं, बिकॉज इसके बाद अगस्त आ जाएगा और अगस्त में आम जो हैं वो मिल तो जाएंगे आपको थोड़े बहुत किसी ना किसी ठेले पर, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रहती। तो आम भी अब जाने वाले हैं, अब बहुत जल्द आपसे अलविदा करने वाले हैं। तो आम के शौकीन लोगों को जितने भी आम पसंद है उन्हें जरूर खा लेने चाहिए, बिकॉज फिर ये वक्त आपको अगले साल ही मिलेगा, यानी कि 2027 में। अंटिल एंड अनलेस आप जो हैं वो अपने दिमाग, वो अपने जो आम हैं उन्हें जरूर खा लें। इसी के साथ साथ आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है, यानी कि दिमाग का आलमी दिन। और वर्ल्ड ब्रेन डे मैं कहूंगी उनके लिए है जो अपने ब्रेन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबके पास दिमाग तो मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसका ना इस्तेमाल कम करते हैं, ये एक बड़ा मसला है हम लोगों की जिंदगी का। लेकिन ये बड़ी कीमती चीज है भाई, इसको आप जैसा ट्रेन करेंगे बिल्कुल वैसा ही आपके साथ रहेगा। और आपको पता है कि हमारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, हम कितना ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं, रिकग्नाइज रख सकते हैं, हमारा ब्रेन हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। लेकिन हकीकतन तौर पर ना हम इसका इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सो प्लीज डू यूज योर ब्रेन। इसे आप जैसे चलाएंगे बिल्कुल वैसा चलेगा, तो इसीलिए इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसे अच्छे से चलाएं ताकि ये आपके काम आए। और भी मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं जिसे हम करेंगे शामिल, लेकिन उसी के साथ साथ जो लोग हमें सुन रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ऐसे बन सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।
3: She could keep on because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: ओके जी, सो एक अदर ट्रैक के साथ हम आ चुके हैं वापस। उसी के साथ साथ हमें आसिया मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? कहती हैं आपके मिजाज बिल्कुल ठीक है। कहती हैं आज हमारे लंच में चिकन बिरयानी है बट अभी तक तैयार नहीं हुई। ओके ठीक है जी, अभी तो वैसे लकीली आपके पास टाइम भी मौजूद है बिकॉज अभी आई थिंक गैस होगी और गैस भी जो है वो हमारे साथ काफी प्रैंक्स करती रहती है, तो बस कोशिश हर किसी की ये होती है कि जो भी बनाना है वो बन जाए, क्योंकि अगर एक बार गैस चली गई ना तो अल्लाह, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और बिरयानी तो एक बड़ी ही सेंसिटिव चीज है जिसे बनाने के लिए प्रॉपर दम और प्रॉपर आंच की बड़ी जरूरत होती है, लेकिन अक्सर औकात हमारे पास दम वाली आंच भी आ रही होती है, तो जैसे अगर हमें कुछ पकाना है तो हम उसे कवर करके ना घंटों रख दें तो वो जाके शायद जो है वो कुछ बन जाए। लेकिन अभी आई थिंक आपके पास अच्छा टाइम होगा, आसिया इंशाल्लाह आपकी बिरयानी जरूर बन जाएगी, मजेदार बनेगी, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। इसी के साथ साथ भाई आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को ब्रेन हेल्थ की अहमियत के बारे में आगाही देना होता है। इसका इनिशिएटिव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने शुरू किया था। हमारा ब्रेन तकरीबन 86 बिलियन नर्व सेल्स न्यूरॉन्स में मुश्तमिल होता है। हमारा ब्रेन सोचने, याद रखने, इमोशंस, मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। सिर्फ दिल ही नहीं, ब्रेन की सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और फिश शामिल हो, पानी जरूर पिएं और पानी का पीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, पानी आपकी ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ स्मोकिंग और जरूरत से ज्यादा अल्कोहल से बचें, स्ट्रेस को मैनेज करें और ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बुक्स पढ़ें, पजल सॉल्व करें, कोई नया स्किल सीखें ताकि जो आपका ब्रेन है वो मसरूफ रहे। वार्निंग साइंस हैं जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं, अचानक से बोलने पे मुश्किल होना, अचानक से बॉडी का एक हिस्से में कमजोर होना, ये बड़े वार्निंग साइंस हैं जिसे कभी भी नजरअंदाज ना करें। बहुत शदीद और अचानक हेडेक होना, याददाश्त का तेज या कम होना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी याददाश्त जो है वो तेजी से कम हो रही हो और हमें सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हाँ चलो हो सकता है उम्र का तकाजा है, ये अक्सर औकात हम ये चीजें सोचते हैं, लेकिन ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जिस पर आपको फौरन जो है ना वो डॉक्टर से रिजू करना चाहिए। तो याददाश्त का तेजी से कम होना भी एक अदद वार्निंग साइन है। इस वार्निंग साइंस पर आप जरूर जो है वो एहतियात रखें कि खुदा ना खास्ता अगर इसमें से कोई भी चीज आप महसूस करते हैं तो जल्द अज जल्द अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसर्न करें, बिकॉज अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे है और इसी के लिए किस तरह आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, और अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आप जल्द अज जल्द डॉक्टर से रिजू करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की जाने, बढ़ाते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर कन नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

तो एक और ट्रैक के साथ हम आ गए वापस। हमने कहा क्योंकि जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो चलो जी जाते जाते भी अपने लिसनर्स को खुश करते हुए जाते हैं, यानी कि एक ट्रैक के साथ आपसे खुदाफिजी लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। अगेन वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। और इसी के साथ साथ अरे यार मैं ये बात बताना भूल गया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। कल जिस 35 पैसे पर हम लोग कह रहे थे कि ये क्या कमी हुई है, वहीं जो है वो 4 रुपये बढ़ चुके हैं पेट्रोल की कीमतें। एंड दिस इज सो सैड। अब लेट्स सी व्हाट्स गोना नेक्स्ट। अब आगे क्या होगा इसके लिए हम करेंगे इंतजार। अल्लाह पाक जो भी करे अच्छा करे। टेंशन तो है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और उसी के साथ साथ ये भी था कि जी स्ट्राइक करेंगे पेट्रोल पंप्स वाले, लेकिन उसके हवाले से कोई क्लियर इमेज तो सामने नहीं आई है। लेकिन आप लोग अपना भी ख्याल रखें, और पेट्रोल की कीमतों में हो तो गया इजाफा, लेकिन ऑब्वियसली इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सी यू ऑल टुमारो।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश।
2: 100 FM
3: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
4: Haier का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
5: Like us on facebook.com/FM247365.
6: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
8: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
9: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100
11: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in Our Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Wednesday, 22nd of July, 2026, and aap sun rahe hain hamara show. और आप लोग को बताते चले इट्स रिक्वेस्ट पे शो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स एक कार बहुत ही आसान है जस्ट टाइप के शायद एंड लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और उसे 3636 पर भेजना है यानी कि 3636 पर भेजना है सो facebook.com/rj.jasmine ठीक है यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट बिल्कुल भेज सकते हैं 3636 पर भी चाहते हैं तो वहां पे भी भेज सकते हैं Meanwhile, we are moving on towards the first track of the show. This is going to be the OST of Dhani. Milte hai is gaane ke baad. Hamare saath rahega.

Alrighty, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर एंड facebook.com/rz.jasmine वहां पे भी आप अपना फीडबैक हमें दे रहे हैं एंड इट्स 13 मिनट्स पास्ट टू ऑन द डायल राइट नाउ. चार बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं सो मैसेजेस करते रहिए 3636 पर and facebook.com/rz.jasmineburr. Okay, so meanwhile, we are moving on towards a short little break. Hamare saath rahiyega. Messages karte rahiye 3636 per and page per bhi. Apni request aap bhej sakte hain. Milte hain aapse ek choti si break ke baad. Hamare saath rahiyega.

0: Let the music take control. Control. Let the music take control. That is FM 100 Pakistan.
1: Listeners tell us about FM 100.
2: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
3: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
1: Number one music station. FM 100.
4: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: Maherana Deghbhal mein fitrat parwan chadti hai. Schwabe single remedies, maksoos herbal farms aur nabatati baagha se hasil ki jati hain taki aapko aisa mayar mile jis par aap mukammal bharosa kar sakein. Dr. Hamid General Homeo aur Schwabe Germany ke Pakistan mein 75 saal sirf sehatmand Pakistan ke naam.
4: This program is brought to you by
6: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
8: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
11: facebook.com/fm247365 fm247365
12: your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप किए चाहे देन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और उसे 3636 पर भेज देना है. ऑल्सो आप लोग को बताते चलें कि facebook.com/rj.jasmine पे भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं. तरीकेकार बहुत ही आसान है. facebook.com/rj.jasmine. फीडबैक के साथ साथ आप जो भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यू मोस्ट वेलकम ओवर देयर. लेट अस नो कि आपकी क्या रिक्वेस्ट है एंड विल बी वेटिंग फॉर दैट. ऑलराइट, ओके. सो मैसेज आया हमारे पास निदा का. वालेकुम अस्सलाम निदा, हाउ आर यू? Thank you so much for your message and thank you so much for liking the voice and the show. Okay, she has requested for the song called Halka Halka Surur by Farhan Saeed. Theek hai, sir, play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. ओके, अब्बास ने हमें मैसेज किया. वालेकुम अस्सलाम, ये पेज पे हमें मैसेज आया था. ओके, जुनैद जमशेद के सॉन्ग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है. ठीक हो गया है, चले कोई अच्छा सा ट्रैक हम चला देंगे जुनैद जमशेद का. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का अब्बास. ओके, हमारे पास मैसेज आया है रमशा का. वालेकुम अस्सलाम रमशा, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? उन्होंने भी पेज पे हमें मैसेज किया है एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ओएसटी ऑफ जानिसार. ठीक हो गया, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. Okay, so meanwhile, we are moving on towards another track and this is going to be the track called Halka Halka Surur by Farhan Saeed. Milte hain aapse is gaane ke baad. Hamare saath rahiyega aur messages karte rahiye hamein 3636 par aur aap log facebook.com/rj.jasmine pe bhi feedback hamein bilkul de sakte hain. Tareekekar bahut hi aasan hai. Feedback ke saath saath jo hai, aap hamein jo hai wo सॉन्ग बता सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं. ठीक है, हम 3636 से भी आपकी रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे और पेज से भी हम आपकी रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे. सो हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए. मिलते हैं इस गाने के बाद. ट्रैक इज हल्का हल्का सुरूर और जब थोड़ी देर में हम ट्रैक से वापस आएंगे फिर हम टॉपिक भी अनाउंस करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. So this is the song called Halka Halka Surur.

Okay, Janab, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और शो का नाम है जेनी ना रेडियो मैसेजेस जो है वो 3636 पर काफी सारे जो है वो आ रहे हैं. ओके, जरी नूर ने रिक्वेस्ट किया था सॉन्ग हरजुन बाय सज्जाद अली, तो हम थोड़ी सी देर में उनका सॉन्ग प्ले करेंगे. ओके, हमारे पास मैसेज आया है आसिया का. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिया, आप बताइए आप कैसी हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, बहुत शुक्रिया. अलविदा सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया है सायर अली बग्गा का, ठीक हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज आसिया, अप्रिशिएटेड.

ओके आज हमें नूर ने पेज पर मैसेज किया है, ऐसे वो 3636 पर करती हैं और आज थोड़ा सा देर से भी किया है, बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. अच्छा इन्होंने रिक्वेस्ट किया है जो तू ना मिला बाय आसिम अज़हर जो है वो प्ले कर दीजिएगा. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. महानूर ने मैसेज किया है आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज महानूर. और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मोहब्बत रेजा रेजा, इसका ड्रामे का OST. चले ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. Meanwhile, we are moving on towards another track. The track is the OST of Hum Tum. Milte hain is gaane ke baad.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज है, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर एम कमर मसूद, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हेड सेक्शन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा कैल्शियम की कमी या ज्यादती किन बीमारियों की निशानदेही करती है। जुमेरात 23 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एडको लेबोरेटरीज के तआवुन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
3: This program is brought to you by
4: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365.
7: You wanna be with me, I can make your wish come true.
6: I'm a genie.
7: Genie in radio.
8: Okay, now welcome back. Absolute FM 100 Pakistan. The show is called Genie in a Radio. And so, आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक हमारे शो का ये है कि आपका जो भी नाम है, अगर वो नाम नहीं होता, then क्या कौन सा नाम होता? Let us know on 3636 and जैसे अभी महानूर का मैसेज आया था हमारे पास, तो महानूर से भी पूछ लेते हैं, अगर महानूर आपका नाम महानूर नहीं होता तो फिर क्या होता? और साथ में मुझे दूसरा ट्रैक भी बताइएगा मैसेज करके ऑप्शन में, इन केस अगर ये नहीं हो तो आपके लिए क्या प्ले किया जाए। सो टॉपिक हमारा यही है कि अगर आपका जो भी ओरिजिनल नाम है वो अगर नहीं होता तो फिर कौन सा नाम होता? लेट अस नो ऑन 3636। Meanwhile, हम जा रहे हैं जरीन नूर की रिक्वेस्ट की तरफ। द ट्रैक इज हर जुल्म बाय सजाद अली। मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद। हमारे साथ रहिएगा और साथ में एक और मैसेज इंक्लूड कर लें। अनाबिया ने मैसेज किया है, अनाबिया हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ट्रैक हॉल बसूरी। बड़े टाइम बाद रिक्वेस्ट आई यार इस गाने की। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस ट्रैक। सो मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Okay, the song is Harzum by Sajjad Ali.

Alrighty, Janab. So that was the OST of John Nisar. And bilkul aap log hame messages kar rahe hain 3636 per. It's 11 minutes past 3 on the dial right now. Aapka hamara saath rahega 4 baje tak, 4 baje se thoda pehle pehle. Okay, so Janina Radio is the name of the show and today we are talking about ki agar aapko apna naam change karna padta to aap apna naam badalte ya jo aapka naam abhi hai aap usi mein khush hain ya agar koi change karke rakhna chahte so kya rakhte aap hame message karke 3636 par bhi bata sakte hain aur facebook.com/rj.jasmine wahan pe bhi inbox karke hame bata sakte hain. Okay, so Mahanu मैसेज किया है सफोरा नाज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्ट. मानूर प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस इसको कर रही हूं. इट्स सफोरा और सफोरा, सफोरा नाज और सफोरा नाज. अच्छा, मतलब जो है कह रही है कि इनके अबू को पता है, वो भी घर पे नहीं है. और जरीन को जो है इन्होंने सलाम कहा है. जरीन, इफ यू आर लिसनिंग, आपको महानूर सलाम कह रही हैं. चलो उनकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम कह देती हूँ उनका फिर देर में मैसेज आएगा. ओके, जनाब facebook.com/rj.jasmine पे भी आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं. नाहिद ने मैसेज किया है वालेकुम अस्सलाम. नाहिद, शिद्दत का ओएसटी प्ले कर दीजिए. एंड आई लव माय नेम, आई डोंट वांट टू चेंज इट. ओके नाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, आई जस्ट गॉट इट. अभी हम जा रहे हैं महानूर आपकी रिक्वेस्ट की तरफ. आपने तपिश का ओएसटी रिक्वेस्ट किया था, सो दिस ट्रैक इज फॉर यू, द ओएसटी ऑफ तपिश. मिलते हैं इसके बाद.

0: Let the music take control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
5: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
7: Genie in radio.
8: Your favorite number. On my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ Jasmine.
9: Alrighty, Zanab, so right now we are moving on towards the track Khani, the OST of Khani. Milte hain is gaane ke baad. Messages karte rahiye 3636 per facebook.com/rz.jasmine. Us par bhi aap hame bilkul messages kar sakte hain aur comments de sakte hain.

Okay, Janab, so that was the OST of Shiddat. You were listening it to or FM 100 Pakistan pe aap sun rahe the. So the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. Hum log naam ke hawale se baat kar rahe hain. Acha, hamare paas 3636 par message aaya tha. Wo Nahid ne hame message kiya tha aur unhone kaha tha ki Aatif Aslam ka koi bhi acha sa song jo hai wo play kar dega. So kafi der ho gayi hai. To abhi main Nahid ki request ki taraf jaungi. The track would be Duri by Aatif Aslam. Aur Shahid ne message kiya hai, bahut shukriya aapne song play kiya. It's my pleasure. Thank you so much for your message. आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया. सो जनाब, इट्स 36 मिनट्स पास 3 ऑन द डायल राइट नाउ. कुछ ही टाइम रह गया है, 15 से 20 मिनट रह गए हैं शो को खत्म होने में. आप लोग जल्दी जल्दी मैसेज करें फॉर योर ट्रैक्स. मैंने आप लोगों को बताया आप 3636 पे भी कर सकते हैं मैसेज, चाहें तो facebook.com/orz.jasmine पे भी कर सकते हैं. मुईन खान ने हमें पेज पर मैसेज किया है एंड उन्होंने कहा है कि उनका नाम उनकी पुप्पी ने रखा था, सो ही इज हैप्पी अबाउट इट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज ऑन आवर पेज. सो मीनवाइल हम जा रहे हैं नाहिद की रिक्वेस्ट की तरफ. द ट्रैक इज दूरी. ओके, पेज पे हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, नाम है फारूक और उन्होंने फितूर का ओएसटी रिक्वेस्ट किया हुआ है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज फारूक, बिल्कुल प्ले करेंगे. लेकिन अभी हम जा रहे हैं दूरी बाय आतिफ असलम की तरफ. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweep E Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: Sweepy Clean, kare tezi se sak daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
8: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365. 100, 100.
10: Evening Drive Time with

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: किसने कहा था पैसे

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
5: Sweep V Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: 100 FM.
7: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
8: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.

0: Kurdistan's number one sound.
1: FM 100.
0: FM 100.
1: Number one on the FM dial.
2: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
3: Phoenix Laga aur Bhool Ja, Phoenix Laga aur Bhool Ja.
2: And
4: Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैस कैश.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा. श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पार्लर से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: किसने कहा था पैसे

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
13: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
14: FM 24/7/365

0: टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 24/7/365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
2: 100 FM.
3: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
4: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator.

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश।
2: 100 FM।
4: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے. Evening drive time with DJ.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर एम कमर मसूद, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हेड सेक्शन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा कैल्शियम की कमी या ज्यादती किन बीमारियों की निशानदेही करती है। जुमेरात 23 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना?
3: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एडको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरकीब देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365 Evening Drive Time.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is F-

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: 100 FM
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving। No Frost, No Worries।
2: Like us on Facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सरदर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतल्लिक کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث تلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: FM 100's Time Check It's 10 PM
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
0: 100 FM
3: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
4: FM 24/7 365 FM 24/7 365
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: 100 FM
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 24/7/365

अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश।

0: एप्लीकेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ, आइए इस खतरे के खिलाफ मुद्दे। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 247 365.

FM 24/7 365. FM 24/7 365.

वेलकम बैक सुने हो, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बताते जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, यानी कि समझ रहे ना आप। सवाल, हाय हाय, बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे, फिर मैंने सोचा एक सवाल कर लेते हैं और बाकी आपको आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर देंगे, क्या ख्याल है? हैं जी, जी हैं जी। तो सवाल ये है कि दुनिया में कितने अजूबे हैं? आप सोच रहे होंगे अरे इतना आसान सवाल पूछ लिया। ये तो चले आप बता दीजिएगा कि दुनिया में कितने अजूबे, ये नहीं कि नाम बताए, बता दे कितने बस। लेकिन सवाल तो अभी, यानी कि समझ रहे ना, करना है। सवाल ये है कि दुनिया के जो अजूबे हैं, अब ये नहीं बताऊंगा कि 8 है, 10 है, 15 है, 6 है, जितने भी अजूबे ये भी आप नहीं बताना है, उनमें सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अजूबा कौन सा है, यानी कि उसको देखने के लिए लोग ज्यादा जाते हैं। वैसे तो सभी अजूबा देखने जाते हैं, मगर इन सब अजूबों में सबसे ज्यादा जहां पर विजिट होता है, जाया जाता है, वो अजूबा कौन सा है, ये आपने बताना है। 3636 बार। सबसे पहले फीदा काटा है भाई, आजकल फुल टाइम चार्ज सबा गुल, मेरी प्यारी सी बहना ने कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई लाला संजीदा भी मुश्क मानूर को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम। अस्सलाम सबा गुल, बाकी कौन है? बाकी कुछ नहीं है क्या मेरा बच्चा? ये लिखा करो कि तमाम सुनने वालों को भी सलाम, यानी कि समझ रही है ना। और कहती है नदीम भाई मेरी बहन की बात पक्की हो गई है, एलर्जी वाह जी वाह। और जी क्या ये सॉन्ग मेरी बहन और लाला को नाम लेकर डेडिकेट कर सकते हैं? नहीं, आज मैं कोई भी गाना कर दूंगा डेडिकेट अच्छा सा, मगर नो रिक्वेस्ट हैं जी, ते हैं जी। तो खैर बहुत बहुत मुबारक हो, मैं इसे कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा गाना चलाऊं जो कि मतलब बात पक्की होने पर होता है, हैं जी ते हैं जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? वाली साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है मेरी प्यारी सी शहजादी बहन जरीन नूर ने, और कह रही है भाई संजू की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करे ठीक हो जाए मेरी प्यारी संजू। संजू क्या हो गया? शहजादी ठीक हो जाओ भाई, हम संजू के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे और उनको आपकी जानिब से गाना भी डेडिकेट करेंगे, यानी कि समझ रही है ना आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम सर हैं? डॉक्टर तो वो हैं, मैं कहां से है? खैर फिर भी कह रहे बाइक को मैंने हर वक्त साइकिल समझ लिया है, बार बार घूम कर पेट्रोल खत्म किया है, कैसी बचत करूं हबीबी बता सकते हैं? सबसे पहले तो ये डॉक्टर जो है, बाइक का डॉक्टर यानी कि मैकेनिक डॉक्टर, आपको जरूर बताएगा, लेकिन जब तक आप अपना नाम नहीं लिखेंगे तब तक नहीं बताएगा। यानी कि समझ रहे ना आप भाई, हमारा शहजादा समी भी आ गया है, लगता है कि आज हमारी होने वाली भाभी ने कहा है बस मुझे नींद आ रही है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सलाम टू गुफरान भाई एंड ऑल लिसनर। आज सत्तारिया भाई, ये सत्तारिया। नदीम भाई आवाज ठीक नहीं आ रही ना, सॉन्ग जरा चेक करवाए, अभी करवाता हूँ जनाब, चेक बेफिक्र हो जा, इंटरनेट पर सुने, इंटरनेट पर भाई। हमारी प्यारी सी बहन हलीमा पठान भी आ गई है, अरे क्या बात है, सुन रही है भाई, सुन रही है, अभी तक तो यही पता है। चले इसी बात पर हम जाएंगे, खैर मुबारक सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम, सभा कह रही है सभा गुल। और सीमा सायम आ गई है मेरी बहना, मुझे भैया कहती है ये,
કરી નદીમ ભાઈઓ એક અચ્છા સા સોંગ સમી ઇમરાન ભાઈ સલીમ ભાઈ સંજુ ચાચી હુમા અરુષા નરીન તોસીફ અયુબ લાલા ડેડિકેટ કર દે બિલકુલ કર દેંગે જનાબ બેફિકર હો જાય કોઈ મસલા હી નહીં હો સીમા સાયમ તો હમ અભી કર દેતે બલકે ઓય ઓય ઓય ઓય ઓય યે કોન સા ગાના ચલ રહા હૈ હાં જી તો અભી હમ ગાના ડેડિકેટ કરતે હૈ સીમા સાયમ કી જાનિબ સે જિન જિન કે મેને અભી નામ લિયે ઉન સબકો બહોત પ્યારા ગાના હૈ ભાઈ ये पकड़ लीजिए।

0: ششڑ مشڑ دے ابو کے ششڑ مشڑ دے ابو کے
1: جانا سنگارا وینا
0: وا جانا سنگارا وینا
1: ششڑ مشڑ دے ابو
0: ششڑ مشڑ دے ابو دے. ویلکم بیک ایوب لالا جا, اس کا مطلب تو بتاؤ. ششڑ مشڑ دے ابو کے, یہ ششڑ مشڑ گیا ہے اگر میرے کو بتاؤ یار بھائی, میرے کو پتا کرنا ہے بھائی. ششڑ مشڑ دی ابو کی داسیوں کا نا داسیوں کا نا گانا کیسا لگا لالا آپ ذرا میرے کو بتاؤ یار. اور وجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب, السلام علیکم. میں ڈی حسن صاحب سے جان علی کی آواز میں کوئی سانگ سنوا دیجیے گا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, پیشگی شکریہ. سمی شیخ, ایوب آفریدی, نظیم قریشی, خطاب اللالا, ابراہیم ریاض, اور آپ کے بازو احترام والد محترم کی خدمت اقدس میں میرا عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے گا. ہر لمحہ دعا و نیک خواہشات کی ساتھ علیم الدین یوسف زئی صاحب, ایف بی ایریا کراچی. کیا بات ہوئے ہوئے ششڑ مشڑ جوڑے ابو کی. اور لالا بھی کہہ رہے ہیں سبا گل بہن کی منگنی مبارک, سبا گل کی بہن کی منگنی مبارک ہو. سبا گل مشک مانور کو وہ ساکھی میں شفیع, یہ بڑا دیر سے بتایا یار, یہ تو میں چلا تھا, بالکل چلا تھا. ابھی آپ کی ایک اور دو ڈیڈیکیشن تھی نا. اوکے اوکے اوکے. اور مانور کہہ رہی ہیں سبا گل اپنے مانور کہہ رہی ہیں آپ نے پیکج کا نہیں بتایا. ارے میرا بچہ, میری پیاری سی بہن مانور, اس کے لیے آپ مجھے میسج کیجیے, ادھر ہی میسج کیجیے جہاں پر پیکج ہوتا ہے, یعنی کہ سمجھ رہی ہے نا, تو انشاءاللہ یعنی ہو جائے گا. بھائی آپ کل نہیں آئے تھے, ہم نے بہت انتظار کیا. زرین نور کہہ رہی میری پیاری سی بہنا, بس بہنا اس حوالے سے میں 2 بجے کے بعد بتاؤں گا کہ میں کل کیوں نہیں آیا تھا. اور وعلیکم السلام لالا, سبگل کہہ رہی ہیں, مانور کہہ رہی ہیں بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے, بابو آپ کی طبیعت کیسی ہے, میری بابو کی طبیعت اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر کسی لڑکی نے مجھے دل نہیں دینا تو اپنے بال ہی دے دو, 16,000 روپے کلو میں بک رہے ہیں. اس میں بھی فائدہ سوچ رہے سلیم میمن بھائی. اور جناب السلام علیکم, عروسا میمن میری پیاری سی بہن آ گئی. کہہ رہی بھائی پلیز تھوڑا سمجھائیے کہ اب شادی کر لو. بھائی روز میرا جھگڑا ہوتا ہے یار, صحیح ہوتا ہے جھگڑا تمہارا. کسی بہن کو ارمان نہیں ہوتا کہ اس کے بھائی کو سہرا دیکھے آئے, سو سویٹ. ایک سانگ آل کزن ہو جائے گا عروسا. اچھا ویسے تو میرا خیال ہے کافی عرصے پہلے تو عرفان میمن کچھ اس بارے میں سوچنے لگا تھا, مگر اب اچھا میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے نا ایک بات بتاؤں گا. عروسا میمن شو سنتی رہو ٹھیک ہے, تو وہ عرفان میمن بھی سن لے گا تو ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں کچھ آ جائے. اچھا بھائی مانور اور سبا گل دونوں ایک دوسرے کو وعلیکم السلام کہہ رہی ہیں. امین شہزادہ آ گیا میٹرو ویل, تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ندیم بھائی, شو وی آئی پی بنداس, بولے تو جھگاس. سویٹ فیملی کو سلام میری جانب سے, ایس جی کو ڈیڈیکیٹ کر دیں رحیم شاہ کا گانا. اوکے. اور انیس کہہ رہے ہیں انہیں بھائی دنیا میں سارے عجوبے ہیں. ارے بھائی بہت اچھی بات ہے بھائی, سب ساتھ ہی بتا رہے ہیں بھائی. اور یہ بتائیے کہ ان 7 عجوبوں میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا عجوبہ کون سا ہے, انیس یہ بتاؤ. سوال بیسیکلی یہی ہے. لالا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے عجوبہ تھی, ایک ہے عجوبہ تھی, وہ سب سننے والے جانتے. میں نے تو لالا بولا ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں ایک نہ ایک عجوبہ ضرور آتا ہے. آپ کی زندگی میں جو عجوبہ ہے وہ سارے لوگ جانتے ایف ایم 100 کے. اور اجر سانگ سنجو کے نام, زرین نور کہہ رہی ہیں زرین بے فکر ہو جاؤ, اوکے ٹیک قسم کا ٹریک جو ہے وہ سنجو کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم سنجو کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے, اور میں پاز دوں گا تقریباً 5 سیکنڈ کا. ٹھیک ہے, آپ سب نے آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کرنی ہے نام لے کے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہماری پیاری سی سنجو کو صحت یابی عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, شاد فرمائے, خوشحال فرمائے. آمین سم آمین. पांच सेकंड का पॉज। इसका मतलब है आप लोगों ने भी दुआ की है, थैंक यू। और नदीम आपने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, सलीम मेमन कह रहे हैं। सलीम मेमन मैं सारे मैसेज पढ़ रहा हूँ, आपका मैसेज था तो सही यार, वाकई में स्किप कैसे हो गया। ये आपके मैसेज इधर गए यार, वो मेरे को याद है यार आपका मैसेज आया था यार, सभा का मैसेज, जरीन का मैसेज, ये शुरू शुरू के मैसेज देख रहा हूँ। अच्छा भाई, बाइक वाले जो बंदा है जिसने मुझे डॉक्टर कहा था, उसने अपना नाम नहीं लिखा, नाम बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा मसला बताऊंगा, मसले का हल बताऊंगा। और सलीम एमन का ही मैसेज देख रहा हूं मैं, ये सलीम एमन हमारे बिरयानी वाले हैं। नदीम ब्रो, आपको और एफ एम हंड्रेड की पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा सॉन्ग जरूर चलाना है हमने। ओके ओके, ये था मैसेज आपका, तो आपका मैसेज हमने पढ़ लिया, बाकी सारे मैसेज पढ़ लिए, हैरत है आपका ही मैसेज स्किप हो गया। लेकिन इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शाम हो। रज्जाक भाई कह रहे हैं, अने भाई आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम। ना ना रजाक भाई, इस तरह का बात नहीं करते यार, बच्चे हैं यार बच्चे। और अयूब अफरीदी कह रहे जिगर सॉन्ग अच्छा है, दासियों का ना उसका आपने बताया नहीं, क्या था सड़े मशे बड़े वो के क्या था, मैं जरा देखूंगा वो, मैं वो अभी सुनूंगा। जुल्फ में मरूना और पता न सड़े मशे मड़ो पता नहीं, इस तरह सड़े मशे क्या था, क्या कहता, मैं भी सुन लूंगा वो। वाह वाह क्या बात है, गाना भी बड़ा मेलोस आया। ये गाने में हाँ, ये सरसों इसका बताए मतलब, सरसों होते की इसका मतलब बताओ भाई, सबागुल तुम भी बता सकती हो, महानूर तुम भी बता सकती हो, हमारे जितनी भी पख्तून बहन भाई सुन रहे हैं वो सब बता सकते हैं, मुझे बताओ मतलब। और अनीस कहने सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जूबा दीवारे चीन है, दीवारे चीन के दो वोट हो गए भाई। अनम मेमन आ गई हैं, अरे वाह भाई आज तो मेरी सारी बहनें सुन रही हैं, मेमन फैमिली कह रही है सलाम वालेकुम, हमारे पास एक ही अजूबा है इरफान मेमन जो हर जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट सॉन्ग आयशा को, दुआ को, अनिला अरूसा सिस्टर, महक क्यूट अना आयत को भी डेडिकेट कीजिएगा, सज्जाद अली का जाहिर है। मगर आप लोगों ने मेरी टीचर का नाम क्यों नहीं लिखा, अनम मेमन दिस इज रॉन्ग, हमारी टीचर की तो मंगनीशन नहीं हो रही है ना, तो आप लोग उसको भूल गए, वाई अनम बताओ मुझे इसका जवाब दो। नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, कल क्या गुरु मंदिर से नुमाइश का चक्कर लगाने गए थे। अरे वाह वाह, अच्छा अपने बारे में बता रहे हैं, हमारे साहबजादा साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए साहबजादा, लव यू यार। और लाला और समी भाई को दिनों जान से हमारा सलाम कहना सुने हो, ये हमारे सलीम मेमन फालूदे वाले कह रहे हैं। समी तुम्हें क्या हो गया, चुप हो गए, उदास हो गए हो क्या, ये मेरे हमारी होने वाली भाभी से बातें कर रहे हो, जरा बता देना। जरीन नूर कह रही है सवाल का जवाब है, दुनिया में सात अजूबे हैं, बिल्कुल सात अजूबे हैं, द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिजा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला या विजिट किया जाने वाला अजूबा बता रही है। अहराम मिस्र के हवाले से इन्होंने कहा है, अंग्रेजी में लिखा है, मैंने उर्दू में तर्जमा कर दिया है। और चाय के साथ पापा खाना सेहत के लिए कैसा होगा डॉक्टर साहब, सर आप यकीन माने हजार बीमारियों का इलाज है ये, नाम नहीं लिख रहे हो ना तुम, चाय के साथ पापा खाए ना, अब उसके मैं आपको तरीकेकार भी बताता, अब रोजाना चाय के साथ पापा खा रहे हैं तो टेस्ट एक ही आ रहा है, मजा भी आ रहा है, चलो ठीक है, अब मजा दुबाला करना है, अब दुबाला कैसे होगा, यानी कि चार चांद कैसे लगाने, तो जो पापा है कड़क सा पापा उसके ऊपर लगाया हम मक्खन। और अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते तो हल्की थोड़ी थोड़ी सी चीनी उसके ऊपर, उसके बाद चाय में डबोए उसको और फिर खाए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। ये डॉक्टर साहब का दूसरा नुस्खा कड़क से पापे के ऊपर। अगर मलाई है घर में तो मलाई की एक लेयर लगाएं। अगर चीनी पसंद है यानी कि मीठा ज्यादा पसंद है तो चीनी छिड़के, नहीं पसंद तो वैसे ही। मैं तो दस नहीं सकता कितना मजा आता है चाय पापे का। और आगे बढ़ते हैं। मानूर कह रही है सबा गुल अच्छा ये पश्तो में लिखा हुआ भाई, वो उसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। खोर खुदे ना ना दियम मुबारक शो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मंगनी की मुबारकबाद, बात पक्की होने की। खुदे ना, अच्छा इसका मतलब है बहन की मंगनी की मुबारकबाद। देखो मुझे पश्तो आना शुरू हो गई है, तुम लोग सब मेरे टीचर बन जाओ फुल टाइम। अरुषा मेमन कह रही है दोस्तों के साथ गए हैं, आपका शो नहीं सुन रहे। फिर तो मैंने चर्चा करने का फायदा नहीं है, जब वो शो सुने तो अरुषा मुझे बताना, गाना तो मैं चला दूंगा। मानूर तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ लिया है। खैर मुबारक लाला, अल्लाह संजीदा आप ही को सेहत अता करे, आमीन सुम आमीन। और ये कह रही है सबागुल, यार मेरा ख्याल है मेरा कोई गाना की जानिब जाना चाहिए। हाय यार आज ये इसने जो मैसेज किया ना, पहले मैं वो मैसेज पढ़ लूंगा, ये बड़ा जबरदस्त सा मैसेज। दिल की अरमाजों में खो गए, पेट्रोल की प्राइस देखकर गुस्सा आ गया था, रोज पैसे बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये बात तो सही है आपकी। मैं आज पेट्रोल मतलब जब FM आ रहा था तो पेट्रोल भरवाया भाई, मर्जी है भाई। एक वो मुझे पता क्या याद आता है इस हवाले से, मुझे बदमाश याद आते हैं। जो बदमाश होते हैं उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, एक तो ये मर्जी है भाई, बढ़ा रहे हैं क्या कर लोगे हा? बताओ क्या कर लेगा भाई हा? अबे भाई पेट्रोल का पता ही नहीं चल रहा। अच्छा इसमें सबसे ज्यादा कसूर मैं आपको बताऊं, ये पेट्रोल के प्राइस डे बाय डे बढ़ते भी जाते हैं। अच्छा कम होते हैं, किसी चीज की कीमत कम नहीं होती, और जब दोबारा बढ़ते हैं तो फिर और बढ़ा लेते हैं। तो भाई पिछली मरतबा तो बढ़ाए थे जब 400 का पेट्रोल गया था, तो आप लोगों ने आसमान पर जो प्राइस पहुंचाए हैं तो वो 400 से जब 310 पर आया तब तो आपने कम किए नहीं। सॉरी बाकी चीजों के प्राइसेस अब 310 पर आ गया तो वो प्राइस वहीं पर खड़ा है जब 400 पे जब उन्होंने बढ़ाए थे। उसके बाद 310 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर बढ़ाना शुरू कर दी। अबे भाई क्या चल रहा है भाई। कहने का मकसद ये है कि इसमें समी बिल्कुल आपको गुस्सा आना चाहिए, मुझे भी आया और दिल भी जलता है, मगर मसला ये है कि हम खामोश हैं, बढ़ा दो यार। एक बड़ी जबरदस्त एक कहानी है, वो कल सुनाऊंगा, कल का शो जरा थोड़ा सा शीलो है ना, शीलो रोमांटिक किस्म का, दिल की बातों का, दिल दुखाओ तो इससे हम सबका ही दिल दुखा है। जरूरी नहीं मोहब्बत से ही दिल दुखता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से भी दिल दुखता है, यकीन मानो हकीकत बता रहा हूँ। हाँ तो हम जा रहे थे गाने की, अब समी ये गाना चला रहा हूँ मैं और उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। और ये गाना जनाब हम समी को डेडिकेट कर रहे हैं, समी की जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं हमारी होने वाली भाभी को। ठीक है समी भाई, पसंद नहीं आए तो हम एक और चला देंगे आपके लिए, ठीक है ना। फिलहाल समी के लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे भाई। शुक्रिया कीजिए आए हमारे सनी भाई ने और कहा है कि नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब गाना अच्छा लगा तुम्हें, ये दूसरा चलाऊंगा, ये बताओ बताओ बताओ बताओ। और कह रहे नदीम भाई सॉन्ग अच्छा प्ले करें, मूड अच्छा हो जाए, हमारी वो आज 11 बजे सो गई थी इसीलिए तुम यही हो। और कह रहे हैं कि आप वाकई सही कहते हैं, हम कौम नहीं आवाम है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, कौम होते तो ये हाल होता हमारा, यानी कि समझ रहे ना। और गाने ये वाला अच्छा नहीं लगा तुम्हें क्या यार, मैं नए नए गाने चला रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए शहजादे, यानी कि समझ रहे ना आप, या समझा करो यार समझा करो। और जनाब मतलब क्या शो, अरे यार सतार भाई आज तो ये चांद कहाँ से निकला है भाई, थैंक यू वेरी मच। तो खाना नहीं खा रहे आज, खाना खा लिया नहीं खाया आज? अच्छा अरे भाई आज तो भाई बाकी जान पता नहीं कहाँ से निकला भाई, बार भाई चाय लेकर आ गए, बहुत दिन हो गया बात। अच्छा मतलब क्या शो, शराबा है पानी में सा शोर मशहूर, अच्छा उबो के सबा के, ओके पानी में जो शोर होता है ना पानी की लहरों की, छन छन छन, अरे समझ गया मैं, जैसे वो कहते हैं पदे बाड़ा के उबो गड़े वड़े भी ना, वो गड़े वड़े टाइप का, सही कह रहा हूँ ना मैं। और खैर मुबारक मानूर डेरा मनाना वही जी सब अगोल। और जिगर जिस लिसनर ने भी थोड़ी देर पहले चाय पी ली है, अल्लाह कमाल से दे उनको, मैं भी पीऊंगा वैसे कौन सी लिसनर ने चाय पी ली है वो चाय पिया यार अच्छा है, तो मजे ही दवाला हो गया, गड़े बड़े भी रहे शिनिवोरी ला वंगी रहे। और जनाब मैं आपको एक गाना और सुनाता है यार, थोड़ा सा चेंज मारे शायद समी को वो चेंज पसंद आ जाए भाई। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि कोई तेज तरार किस्म का गाना, और फरमाइश भी पूरी हो जाएगी, गाना भी तेज तरार चल जाएगा, चले है तो पुराना लेकिन जरा थोड़ा सा तेज तरार गाना है। तो जनाब ये ट्रैक जो है वो हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे, पहले ये वाला मैसेज पढ़ लूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, आपकी टीचर के आए के कैसे हो आप, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने मतलब मेमोरी में लिखा मेरी टीचर ने, लेकिन मेरे टीचर को हम गाना तो डेडिकेट कर ही रहे हैं अभी, लेकिन उसके साथ साथ हम नाम भी लेंगे तमाम हमारी प्यारी प्यारी सी बहनें कजन्स जो हैं इरफान मेमन की, अना मेमन, आयशा, दुआ, अनीला, अरुजा, महक, इरफान मेमन, मानूर, और उसके अलावा मेरी टीचर सायरा मेमन, इरफान मेमन, सलीम मेमन, ये पालूदे वाला सलीम मेमन, तो आप सबको, और उसके साथ साथ हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी सज्जाद अली को बहुत पसंद करते हैं, तो उनका गाना एक हेलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मैं ही माहिवाल हूँ तेरा सुनिया सुन जा ब्यूटीफुल सजाने लगा ट्रैक चलाया और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद भी आया होगा। अमा सजाद अली पसंद नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई। हाँ भाई हाँ भाई। अच्छा भाई रजाक भाई का मैसेज हो गया था और अनीस भाई का भी हो गया था और

0: हाँ जी, मैसेज ढूंढ रहा था आप लोगों के, स्क्रॉलिंग कर करके कि कोई मैसेज आपका स्किप ना हो जाए। मानूर कह रही है, बाब सात अजूबे हैं, ज्यादा देखा जाने वाला अजूबा मुझे नहीं पता।
1: अरे क्या बात है भाई।
0: और खैर मुबारक वाला मैसेज भी हो गया था। हाँ ये वाला था मैसेज, आपकी टीचर के आए आन के आए क्या आए आन कि कैसे हैं आप, इतना दिन बाद मैसेज करी आए, इतने दिन के बाद मैसेज किया है, जल्दी गानो हिला दियो, गाना जल्दी चला दीजिए। अमीन जी बाडे कजन सुमयुन, मेरे सब कजन सो जाए फिर। अरे टीचर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद जो है वो मीमिनी की मेरी जो है क्लास हुई है थोड़ी सी, ये बहुत शुक्रिया। अमीन कह रहे हैं डेरा डेरा मुबारक शाह, खुदीना सलाम सवा गुल बखैर, और शो सुन रही हैं, कल कुछ मीठा ले आना। हाँ मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो, डेरा डेरा मुबारक हो ना बोला है, सवा गुल हमने गाना चलाना है अभी। अरे मुझे याद आ गया भाई, ये गाना मैंने पहले से निकाला हुआ था, तो हम अभी जो है हमारी प्यारी सी बहना जो सबा है, उनकी बड़ी बहन, वो भी हमारी प्यारी सी बहन है भाई, उनको हम उनकी मंगनी की मुबारकबाद देंगे अभी गाने के जरिए। और सबा गुल कह रही है मैंने भी चाय पीनी है, तो पी लो ना लाला, यही तो कह रहे हैं। और आप भी चाय पी लो, बिल्कुल सेट हो जाओगे, ये जल्लारा भी चाय पीने के बाद पता चलेगा। हाँ गर्म है, अभी भी गर्म है भाई, मैंने अभी तक एक सिप भी नहीं लिया। और हमारे प्यारे से शहजादे यूसुफ भाई पाबोश से भी आ गए, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी चाची यूसुफ भाई बानो और तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई खुताबुल लाला और गुफरान भाई एंड मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम।

उन्होंने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, और अनीस भाई कह रहे हैं कोई आईना इंसान की इतनी सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर सकता जितना कि उसकी गुफ्तगू। वाह वाह वाह, क्या बात की है, ये फैक्ट है। सच्चाई जो है वो जुबान से ही सामने खुलती है कि है क्या है। वो एक बड़ा खूबसूरत सा एड भी था, उसमें भी इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जो है लोगों के सामने लाया गया। आप देखिए भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इंतहाई दिखने में खूबसूरत बावकार शख्सियत लगते हैं, बावकार समझते हैं ना, और वो बावकार शख्सियत जब बोलना शुरू करे तो तब इसलिए सामने आती है कि सफेद कलफ लगे हुए कपड़े पहनकर जो इतना बन ठन कर सामने आया या आई है, असल में वो हैं क्या? हैं जी, ते हैं जी। ऐसी बातें नहीं करनी, हमने फौरन से बेशतर जाना है जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने पर। ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी बहन सबागुल की सिस्टर की मंगनी हुई है, तो FM 100 की पूरी फैमिली की जानिब से सबागुल, ये आपकी बहन के लिए सही।

वेलकम बैक सुनियो लड़ गईया अखियां जब से अखियां लड़ गईया। ब्यूटीफुल ट्रैक और शादी ब्याह में अक्सर ये गाना आप लोगों ने सुना होगा और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। और जनाब जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनियो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर और जनाब गले में खिचखिच। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि दुनिया में कितने अजूबे होते हैं, आप लोग बता रहे हैं 7 अजूबे होते हैं। सवाल असल में ये था और है कि सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अजूबा कौन सा है। अभी तक दीवारें चीन का कहा गया, एल्फ टावर का कहा गया और एहरामे मिस्र के बारे में कहा गया है, और अजूबों के नाम मेरा ख्याल है लोगों को याद नहीं है। अगर याद है तो बताएं भाई, कोई और भी हो सकता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ जी चले बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब और देखते हैं कौन कौन और है। बेगम खाना जैसा भी बनाए उसकी तारीफ किया कीजिए, क्योंकि उसके हाथों में सिर्फ स्वाद ही नहीं होता चप्पल भी होती है। ये कह रहे हैं सलीम मेमन, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा वैसे यार ये वैसे एक बात है, बेगम जब खाना बनाती है ना तो हजारों लोग तारीफ कर लें, भाई बहुत अच्छा बना भाई क्या बात है खाने का, जब तक शौहर के मुंह से ना सुन लेना वो और देख रही होती कि वो बोल रहा है नहीं बोल रहा। बताओ बहुत अच्छा बना बेगम बहुत अच्छा बना, तब तक उसको इत्मीनान नहीं आता। क्या ऐसा है, जितनी भी शादीशुदा खातीन सुन रही है या शादीशुदा मर्द सुन रहे हैं वो इसका जवाब दीजिए प्लीज, जरूर दीजिए। और जनाब वालेकुम अस्सलाम अमीन भाई, खैर मुबारक सभा कह रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, सॉन्ग का इंतजार नहीं था मुझे, क्यों नहीं था भाई, गाना तो चलाना था हमने। अमीन कह रहे हैं कि हाँ यार क्या बात की है, ये मानूर साहबा 3636 का, यार ये तो मैं कहना भूल ही गया, कोई पैकेज नहीं आता, टेंशन मत लो, मोहब्बत है हम सबको FM 100 से, आए आए नो टेंशन, बस मैसेज करो, मोहब्बत है बांटो, ये बात फैक्ट है। आप लोगों के मैसेज बेतहाशा आते हैं और मुझे हकीकत में आप लोगों के मैसेज की बहुत कदर है जो स्पेशली 3636 पे आते हैं। अच्छा जी कह रही है मानूर, कह रही है बाबू कल हॉस्पिटल जा रहे हैं, मजीद आप सबकी दुआओं की जरूरत है, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं।

एक गाना सुन रहा था नदीम भाई, माहौल बन गया था। अगर वो हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अभी तो भाई माहौल बिल्कुल बनाएंगे उससे। लेकिन अभी हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा ट्रैक, बेहतरीन ट्रैक, और ये जरीन नूर की जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारी प्यारी सी संजू को, और उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए। और संजू के पसंदीदा हैं वैसे ये नए सिंगर्स में मुर्तजा खजलबाश, उनका एक ट्रैक जरीन नूर की जानिब से, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सोयों ना जाने क्यों ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और आगे बढ़ते हैं जनाब। लाला कह रहे हैं ताजमहल सबसे ज्यादा देखा जाता है। ताजमहल अय्यूब आफरीदी भाई आप भी ठीक जा रहे हो। अजूबा भी वो पसंद किया है जो मोहब्बत की निशानी समझा जाता है। अच्छा जी शहबाज सिंधी अस्सलाम वालेकुम भाई, सब सुनने वालों को शहबाज सिंधी की तरफ से भली कराया। साईं आप उर्दू बहुत अच्छा और प्यारी बोलता है। साईं भाई कोई क्लासिक सा सॉन्ग सुना दो यार। लव यू FM 100 अरे शहबाज भाई सुनाएगा, जरूर सुनाएगा, डोंट वरी। और नदीम भाई शौक से शो तो मैं आप सबका बातों की आप सबकी बातों की वजह से सुनती हूँ। सॉन्ग के लिए तो वैसे ही कहती हूँ, वेट नहीं करती। आए सो स्वीट मेरी प्यारी सी गुड़िया बहना, थैंक यू। सबा गुलेंगे। और मुश्क गायब है। हाँ मुश्क गायब है। संजू का तो हमें पता है कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मगर उम्मीद यही करता हूँ कि शायद खामोशी से सुन रही हूँ, सुन जरूर रही होंगी। मुझे याद है उनके हाथ में चोट लगी थी गो कि वो मैसेज नहीं कर पाती थी मगर फिर भी सुन रही थी। तो हम सब आपको याद कर रहे हैं संजू, डोंट वरी डोंट वरी। और अभी हम एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जनाब। और हमारे सलीम मेमन बिरयानी वाले जो हैं वो इतने दिनों से मुझे इस गाने की फरमाइश कर रहे थे, आखिरकार वो गाना मैं चला ही रहा हूँ। तो सलीम मेमन बिरयानी वाले भाई आपके लिए गाना ये लो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको ब्यूटीफुल ट्रैक है ना, होप कि आप सबको बहुत पसंद आया है होएंगा। अच्छा, मेरे शोज में आपने अक्सर पंजाबी गाने भी सुने, बलूची भी सुनते हैं, पश्तो भी सुनते हैं, सिंधी भी सुनते हैं, सराइकी भी सुनते हैं, डिफरेंट ट्रैक्स मैं चलाता रहता हूं। तो हमारे पाकिस्तान की जो फोक म्यूजिक है उसकी अपनी एक बात है। अभी मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले मैंने एक और बलूची ट्रैक, जो मुझे बहुत बराहवी ट्रैक है बेसिकली, वो चलाया था, वो भी बड़ा पसंद किया था आप सबने। और ये गाने का भी एक अपना मजा है, बहुत जबरदस्त सा ट्रैक है ये। तो इसी तरह पश्तों के गाने एक से एक बेहतरीन होते हैं। तो हमारी बहुत रिच जो है फोक म्यूजिक है हमारे चारों सूबों का, और चारों सूबों के जो रंग हैं वो यकीन मानिए कि बिल्कुल अलग अलग और हसीन तरीन कलर नजर आते हैं। एक होता है ना कि मिसाल के तौर पर फूल तो फूल ही है, ठीक है ना, और आप जब फूल देखते हैं तो भाई खूबसूरत है। तो वो एक फूल आपने गुलाब का देखा लाल रंग का, तो उसकी खुशबू आपको बड़ी अच्छी लगी। इसी तरह गुलाबी कलर का गुलाब भी होता है, एक रेड कलर का और एक गुलाबी कलर का। तो इसी तरह गुलाब के बहुत सारे रंग हैं। तो पाकिस्तान की जो चारों सूबे हैं, बल्कि मैं तो आपको एक और बात बताता हूं, बहुत मजेदार किस्म की बात बताता हूं। चार सूबे तो ये हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो एजेंसीज हैं जिनको अभी सूबे का दर्जा दिया नहीं है लेकिन देना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान उसमें शामिल है, तो वहां का भी अपना रंग है, वहां का भी जो म्यूजिक है बहुत रिच बहुत प्यारा। उसकी मैं आप लोगों को एक झलक जो है वो सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आएगी। ये रंग जो है ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान का है।

अदे मशु अदे न बशु, ये ट्रैक का जो है वो है टाइटल। ये मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान का म्यूजिक, जो रिच म्यूजिक है, वो सुना रहा हूं थोड़ा थोड़ा।

ब्यूटीफुल और मीठा म्यूजिक है। अभी रिसेंटली हमारे प्यारे से एक बहुत ही पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर सिंगर जिनका नाम है अली जफर, वो भी डिफरेंट हमारी पाकिस्तान की जो लैंग्वेजेस है।

खरे खरे। अच्छा ये अली जफर और इनके साथ जो है सलमान पारस, उन्होंने ये ट्रैक गाया। तो खैर म्यूजिक के हवाले से जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान का म्यूजिक बहुत रिच है, और सिर्फ म्यूजिक ही रिच नहीं, हमारे ये जो सूबों में बोले जाने वाली जुबानें हैं, इनका जो म्यूजिक है, इनका जो ड्रेस है, इनकी जो पकवान है, वो न सिर्फ हमारे पाकिस्तान में चारों सूबों में पसंद किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो पिशावर के चपली कबाब हो, या निहारी हो कराची की, या रबड़ी हो हैदराबाद की, मतलब हर लिहाज से। और हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये प्यारा वतन पाकिस्तान दिया, और आप यकीन मानिए कि ये एक इतनी बड़ी नेमत है, और हम जो हैं पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पाकिस्तान को, अपने इस मुल्क को ओन नहीं करते हम लोग, अपना नहीं समझते। कैसे नहीं समझते अपना, कि अगर अपना मुल्क समझते हो तो हम अपने इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क के लिए। हम अक्सर ये सोचते हैं ना यार, हमारे लिए सब अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मोहल्ला अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। कभी किसी ने सोचा है कि हमारा मुल्क भी अच्छा होना चाहिए? और मुल्क अच्छा कैसे होता है कि अगर हम खुद अच्छे हो जाएं, यकीन मानिए हमारा मुल्क भी अच्छा हो जाएगा। और ये अच्छा होना कोई मेरी नजर में बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने मुल्क को ओन करना शुरू कर दें, अपना समझना शुरू कर दें, तो आप यकीन मानिए कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकी बजाते ही हमारा ये जो प्यारा सा पाकिस्तान मुल्क है, ये हसीन तरीन दुनिया के मुल्कों में शुमार होगा। हम रोड पर अगर कोई कागज फेंकते हैं हमें परवाही नहीं, गाड़ी गलत चला रहे हैं हमें परवाही नहीं, रोड टूट गए हमें परवाही नहीं, हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया परवाही नहीं। हाँ अगर घर में फर्श पर आपके मिसाल के तौर पर कोई गड़ा हो या फर्श टूट जाए तो आप क्या करेंगे? फौरन उसको सही करवा लेंगे। अब आप ये बोलेंगे जी कि हकामे बाला को ये बात सोचनी चाहिए, बिल्कुल सोचनी चाहिए, अगर वो नहीं सोचते तो सही है, क्योंकि हम हैं ही ऐसे, हम सोचने पर उनको मजबूर ही नहीं करते, जब हम सोचने पर मजबूर करेंगे तो ही वो सोचेंगे ना, नहीं भाई अब कर दो भाई, मामला गड़बड़ हो रहा है भाई, अभी तो ये चला पे चल, कोई बात नहीं यार, ये गुजरते रहेंगे इसी तरह, कोई मसला ही नहीं। पाकिस्तान में चार सूबे, पाकिस्तान में चार मौसम, पाकिस्तान में सहरा, समंदर, पहाड़, मैदान, ये भी चार, पाकिस्तान में दरिया, पाकिस्तान में मादनियात के इतने जखायर हैं, इतने जखायर हैं, मगर हमारे पास वसाइल नहीं है उन जखायर को इस्तेमाल करने के, वसाइल हम खुद जो है वो बना नहीं रहे, पैदा नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों मैं दिल की बातें ऐसे करना शुरू हो गया, मैं बहुत जज्बाती नहीं हो गया कुछ? और छोटो यार, खैर जी आगे बढ़ते हैं। समी कुछ कह रहे हैं, लेट आया था जॉब से और नदीम भाई नींद आ रही थी, फ्रेश होके फिर नींद भगाई। फ्रेश कैसे हुआ मेरा शहजादा? मुंह हाथ धोया था तो फ्रेश हुए थे, ये कोई और चीज ऐसी डोज है तुम्हारे पास जिससे फ्रेश हो गए? शुक्रिया नदीम भाई, ये सॉन्ग सबसे पहले आपने प्ले किया था अपने शो में, बिल्कुल ऐसा ही है, थैंक यू वेरी मच कि आपको याद है। नदीम भाई खाने की बैठक करके भूख लगा रहे हो, खाने की बातें करके भूख लगा रहे हो। मैं आज सोच रहा था अली जफर के ये सॉन्ग प्ले करवाऊं, आपने प्ले कर दिया। वो गिलगित बल्टिस्तान का जिक्र हुआ तो समी भाई हमने कहा कि चलो यार प्ले कर दो। अरे मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, कहाँ सो गई थी आप? नदीम भाई मेरे प्यारे भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ढेरों दुआएं, सो गई थी, अभी भी यहाँ खुली और आपके शो में शिरकत करने लगी, बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। सबको हम याद करते रहते हैं,
हमारे अलीम उद्दीन यूसुफ जई अंकल ने थैंक यू कहा है. सर आप थैंक यू ना कहा करें यार, अच्छा नहीं लगता मुझे. अनीस कह रहे हैं अल्लाह पाक आपके दोस्त की मगफरत फरमाए, आमीन शुम आमीन. और उसके अलावा हमारे नदीम ब्रो, मैं अरे ओरिजिनल गाना कहा था, इसमें मजा नहीं आया. अब तुम्हारे मजे के लिए मैं गाने बदलता रहूं. तो सुन लिया ना तुझे मेरे हमेशा कॉल रहे. उसमें से क्या तुमने परफॉर्मेंस दिखानी थी. बाबी ने फरमाइश की थी ये गाना चलाओ और उसके बाद मुझे परफॉर्मेंस दिखाओ. मजाक कर रहा मेरे भैया, दिल पर मत लीजिएगा. ऑलमोस्ट सब फरमाइशें पूरी हो गई मगर एक हमारे शहजादे अय्यूब आफरीदी लाला की फरमाइश जो है वो भी हमने पूरी करनी है. और उन्होंने एक गाने की फरमाइश की थी और कहा था कि भाई जो है सबा गुल को, महानूर को, मुश्क को और बाकी जो उनके अजूबे हैं उनको डेडिकेट कीजिएगा. तो ये लीजिए जनाब.

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको। तकरीबन फरमाइशें सारी पूरी करी है भाई मैंने। और लाला कह रहे हैं बहुत अच्छा सॉन्ग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई। और मेरे दोस्त के हवाले से अनीस भाई का भी और सबागुल का भी मैसेज आया है और मगफरत की दुआ की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों ने दुआ की और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अच्छा जनाब, अब सवाल के जवाब की जानेब आ जाते हैं।

0: अच्छा जनाब, थोड़ा सा गले में खिचखिच हो रही तो इस वजह से थोड़ा आपको म्यूजिक सुनना पड़ा। तो जनाब, मैंने आज आपसे सवाल किया कि दुनिया के कितने अजूबे हैं और वो कौन सा अजूबा है जो सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। आपको एक और बात बताऊं कि 7 अजूबे तो हैं ही दुनिया के, लेकिन ये तब्दील भी हुए हैं। तब्दील इन द सेंस, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको दुनिया के जो 7 अजूबे हैं वो दीवार चीन और उसके अलावा एल्फिड टावर, उसके अलावा पैरामिड्स, इसके हवाले से आप लोगों को पता है। लेकिन जो दुनिया के 7 अजूबे 2007 के बाद बताए गए, या मतलब पूरी दुनिया ने इस हवाले से बैठकर फैसला किया कि अब दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं, तो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें बिल्कुल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आती है, दीवारे चीन जिसको हम कहते हैं, जो तकरीबन 5,500 मील लंबी है, 8,850 किलोमीटर, 8,850 किलोमीटर बहुत होता है। और ये वो चीज है जो कि स्पेस पे चले जाएं और जमीन की जानिब देखें तो जमीन पर एक लकीर की सूरत में नजर आती है। और एक पैरामिड ऑफ गिजा, ये भी कहा गया, बिल्कुल सही है। और एक पैरामिड की ही तरह एक दुनिया में एक अजूबा जिसको करार दिया गया है वो चीचेन इट्ज़िया। ये लैंग्वेज ऐसी है कि इसको प्रोनाउंस हो सकता है डिफरेंट तरीके से किया जाता हो, जो कि मैक्सिको में वाक़े है। ये दीवार चीन का तो आपको पता ही कि वो चीन में, तो एक है पेट्रा। पेट्रा जो है वो जॉर्डन में है। उसके अलावा जनाब माचू पीचू, ये वही पश्तो वाला सिलसिला हो गया। ये एक पहाड़ी का एक ऐसा सिलसिला है जो कि पीरू में वाक़े है और इसको कहा जाता है। और एक है क्राइस्ट द रेडी रेडीमीर, ये जो है ये एक मुजस्सिमा है जो कि मेरा ख्याल है ये ब्राजील की तरफ ही है। और उसके अलावा आपको रोम में क्लोजियम के बारे में तो पता होगा ही, ताजमहल भी आपको पता होगा। खैर, इससे ये तो वो मैंने अजूबे बताए जो कि अभी जिनको कहा जाता है कि भई दुनिया के 7 अजूबे हैं, न्यू 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड जिनको कहा जाता है। और जो ओल्ड हैं उनमें जो है एल्फिड टावर भी आता है, जिसके बारे में आप लोगों ने बताया भी, ठीक है जी। एल्फिड टावर जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में तो आता ही है, उसके साथ साथ हैंगिंग गार्डन, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2007 से पहले जो अजूबे थे, द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिजा ये तो है ही, अभी भी है, और हैंगिंग गार्डन एक जो है वो अजूबों में शुमार होता था। और उसके अलावा जो है बेबीलोन, ये गार्डन बेबीलोन के नाम से, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, और स्टैचू ऑफ ज्यूस, और इसके साथ साथ जो है वो एल्फिड टावर भी है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बताई, अभी ये बड़ी लंबी चौड़ी है। अगर हर अजूबे के हवाले से, नए और पुराने अजूबों के हवाले से मैं बताना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा विजिटेड, यानी कि जहां पर लोग जाते हैं देखने के लिए अजूबा कौन सा है, वो एल्फिड टावर है, वहां सबसे ज्यादा जाया जाता है। पैरामिड में भी लोग जाते हैं, दीवार चीन में भी जाते हैं, ताजमहल में भी जाते हैं, लेकिन अजूबा एल्फिड टावर देखने के लिए लोग सबसे ज्यादा अजूबों में, जितने भी अजूबे हैं वो एल्फिड टावर जाते हैं। اچھا میں نے بہت سارے نئے نئے ٹریک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے رکھے ہوئے تھے جو کہ کافی بچ گئے, اور اب کچھ ایسا ماحول ہوا ہے کہ رات کی جو پہر ہے وہ تقریباً ایسا ہو رہا ہے کہ خاموش خاموش پیارے پیارے سے ٹریکس جو ہے وہ سنے جائیں. تو آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا ٹریک سنا رہا ہوں, نیا گانا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. ایلو پھڑو
1: How weird it's been. So why don't you just say that you love me?

वेलकम बैक आएंगे सुनो वक्त भुर करके उड़ गया हमारे समी शेख ने कहा है मतलब है जवाब बिल्कुल दुरुस्त था बिल्कुल दुरुस्त था अच्छा जी सॉन्ग अगर कह रहे हैं बच गए हैं तो मैं सुबह नाश्ते में सुन लूंगा क्या बात है भाई सही जा रहे हो गुड नाइट शब खैर पखैर शब खैर खुदा पमान लाला कह रहे हैं लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैं जी ते हैं जी अच्छा जनाब अब आपसे चाहेंगे इजाजत और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट करूंगा पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को ये वाला गाना सुनाऊं हाय हाय हाय कैसा गाना है पसंद आया नहीं आया नहीं लेकिन ये वाला गाना मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा उर्दू ही गाने सुनाऊंगा एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है और वो मेरी जानिब से खास तौर पर आपके लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़